प्रभु शरण आगति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाए त्रि ठाकर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमर परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जय प्रसाद पार पटंबर हंडावे तिसे त्याग कर अवर लुभावे जय प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पहर ताक हजास गवि जय जय प्रसाद सबको मान मुक्ता को जस रसन बखान जय प्रसाद रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दरगाह महान पावे नानक पासे ती कर जाव है जय प्रसाद रो कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहे मन सुख पावे हर हर जस कहे जय प्रसाद है सगल सिद्ध ठाके मन सरणी प्रभु ठाकुर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझको ना पहुँचा मन साध साध सिमरो प्रभु उचा जय प्रसाद पै दुर्लभ दे नानक ताकी भगत कराए जय प्रसाद भूखन पहरी जय मन तिर सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अस हस्त सवारी मन तिर प्रभु को कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राग प्रवे प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत मनाई ऊर्स बैसा तिसे त्याई तिसे त्याय जो एक अलख है यहाँ वहाँ नानक तेरी रखा है जय प्रसाद करे पुण्य बोधान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद आचार बिहारी तिस प्रभु को सासा चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद पेखे विस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख से जय बसना जय प्रसाद हर्ष कर चल है जय प्रसाद सपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गल पावे जय प्रसाद सुख सह संभावे ऐसा प्रत्याग अवर कद लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार सिर पाप को मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त तक हो जा जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पाव है साज रे मन मेरे तू तास राज जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगाध प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्वनिधान प्रभु तेरी माया आप हु कहियो न किन हूँ लया जे जित लावो ते लगे हर नाथ नानक इनके कछु नाथ लोग अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मन सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगट सो ज्ञान साध के संग बुझे ब्रह्म नेरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग खूब जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा ब्रह्म समानी साध के संग गोचर मिला साध के संग सदा प्रभुल है साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग वे सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कद हुतावे साध संग असित मन पावे साध के संग माया ते पैन साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु के संग महापनीत साध संग के सोनी बैर साध के संग नवींगा पैर साध के संग नहीं को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं हो ताप साध के संग तजे सब आप पे

साधु के संग शोभा सुरदेवा, साधु के संग पाप लायन, साधु संग अमृत गुण गायन, साधु के संग सर्वथान गाम, नानक साधु के संग सबर जनम, साधु के संग नहीं कुछ काल, दर्शन पीड़ित होत निहाल, साधु के संग कलूक धरे, साधु के संग नरक पर हरे, साधु के संग यहाँ से ला, साधु संग बिछड़त हर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साधु हृदय बसे, नानक उदय साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तर है, साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग कर कर डीठा, साध संग पहे आज्ञाकारी, साध संग हर पही हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जाने, जे तसन ते तब खयाने, साध की उम्मा ते गुण ते दूर, साध की उम्मा रे भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग, जैसे सूर्य सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेब, ज्यो सदा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाओ, नानक ज्यो पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगाल, जैसे तर उपरे अकाल, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच थे ऊंचा, मन अपना है सब थे नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पे, नानक जन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सगर की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी जीना, ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी के उपराज, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के हुए सफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बल प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कसया ना जाय अदा कर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगला कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व घातनी। श्लोक उतारे जो अंतरनाम, सर्व में पेखे भगवान, निमुख निमुख ठाकर नमस्कार है, नानक ओ पर सगल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पात्र रूप न पेखे नेत्र, साधु ठहर सन संगहेत, कर्ण सुने काहू की निंदा, सब थे जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बात न मन ते टरे, इंद्रिय जित पई दोग ते रह, नानक कोट मदे को ऐसा परस, बैस न सोचे से ऊपर सो परसन, बिजन की माया ते होए पैन, कर्म कर तो होवे नहीं कर्म, तिस बैस नो का निर्मल धर्म, काहू फल की

खुआरोए सब मिलेंगे बजे शरण जो बोले सो निहाल सात श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

प्राणवात नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती कबीर अवरा को उपदेश ते मुख में पर है रेत।

बाण चलाए नाम प्रभु ते हय हरे आम महा बिखादी कात पूर्ण गुर पाई है सदगुर कीनी दात मूल नानक खुटई कावो पंचो सब गुरमुख छुटई अमृत नाम निदान दत्ता तुस हर नानक सदा आराद कदे ना जाहे मर जिथे जाए भगत सो थान सुहावना सगले हुए सुख हर नाम ते आवना जी करण जयकार निंदक मुए पच साजन मन आनंद नानक नाम जप पावन पतित पुनीत कहत नहीं सेवी झूठे रंग खुआर कहां लग खेवी है हर चंदौरी पेख काहे सुख मनया हरे हां होम बलिहारी तिन जे दरगे जानिया किने कर्म अनेक गवार विकार कन महा दुर्गंधत वास सठ का चार तन फिर तो गर्भ गुबार मरण ना जानई हरे हां हर चंदौरी पेख काहे सच मानई जिसकी पूजा औद तिसै कौन राखई वैदिक अनक्यो पाव कहां लो पाखई एको चित गवार काज तेरा आवई हरे हां बिन नावै तन चार बिरथा सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावै संत सगल को दीजई जिसै प्राप्त होए तिसै ही पावने हरे हां होंबले हारी तिन जे हर रंग रावणे वैदा संदा संग इकट्ठा होया यो कदे आए रास वेच आप खलोया जो जो ना कर्म सुकर्म हुए पस

सुख विश्राम। कबीर मेरी जात को सबको हसने हार, भले हारी इस जात को जे जपियो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहा डुलावे जियो,

पै अनक करे कर पेश हम राखे गुर अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारिए जिह मुए सुख होए पलो पलो सब कुक है।

कबीर संत मुए क्या रुइये जो अपने ग्रह जाए। रोवो साकत बापरे जो हाट है हाट बिकाए।

कबीर माया डोलनी पवन चकोलन हार संतो माखन खाया छाछ पिया संसार। कबीर माया डोलनी पवन वह अवतार जिन बुलोया तिन खाया अवर बिलोवन हार। कबीर माया चोरटी मुस मुस लावे हाट एक कबीरा नाम से जिन कीनी बारां बाट।

जो चित राखे एक सो ते सुख पावे नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद।

एक स्यों किए आन दुबदा जाए पावै लंबे केस कर पावै करर मुड़ाए। कबीर जग काजल की कोठरी अंध परे तिस माहे होम बलिहारी तिन को पैस जो निकस जाहे। कबीर यो तन जाएगा सको तल हो बिहोर नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोर। कबीर यो तन जाएगा

राम कसौटी सुस है जो मर जीवा होए। कबीर युजल पहरे कापरे पान सुपारी खाए। एकस हर के नाम बिन बादे जम पर जाए। कबीर बेड़ा जर्जरा

कबीर हरदी पीरतन हरै चून चहन नर हाए बलिहारी एह प्रीत को जे जात बरन कुल जाए।

मन तो मैं गल हुए रहे हो, निकसो क्यों कह जाए। कबीर ऐसा सतगुर जे मिले, तुठा करे पसाओ। मुक्त द्वारा मुकला, सहजे आव जाओ। कबीर नाम छान ना छापरी, नाम ही कर नहीं गाओ। मत हर पूछे कौन है, मेरे जात न नाओ। कबीर मुहे मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार। मत हर पूछे कौन है,

मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर।

कबीर माटी के हम पुतरे, मानस राख्यो नाओ चार दिवस के पाहुने, बड बड रूंदे ठाओ। कबीर मेहदी कर कालिया,

गुण की लहर चबक जब देखियो बेड़ा जर्जरा तब उतर परियो हो फर्क। कबीर पापी भगत न पावई हर पूजा न सुहाए माखी चंदन पर हरै जहा बिगंध तह जाए। कबीर बैद मुआ रोगी मुआ मु

काया हांडी काठ की, नाओ चरै बहोर। कबीर ऐसी हुए परी, मन को पावत कीन। मरने ते क्या डरपना, जब हाथ से दौरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसिए, गुण को मरिए रोए। अवगुणी यारे मानस है, पलो न कहिए कोय। कबीर गागर जल परी, आज काल जह फूट। गुरजुन चेत अपनो, अदमाज लीजेंगे लूट। कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाओ। गले हमारे जेवरी, जहाँ खिंचा।

हृदय राम न चेत ही इह जपनी क्या होए। कबीर विरोपयंगम मन बसै मंत न मन कोवे। राम बियोगी ना जिया

लोह काठ निर्गंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सया जाए। एक जो साधु मुह मिलियो, तिन लिया अंचल लाए।

कबीर सत समुंद मस करो कलम करो बनराए बसदा कागद जो करो हर जस लिखण ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करै,

रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चेचड़ी, सुनो बीर मसान। लोग सबाया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दहद सजाए। जो जैसी संगत मिले, सो तै सो ही फल खाए।

कबीर मारी मरोक संग की केले निकट जो बेर ओह झूलै ओह चीरिया साकत संग नहेर। कबीर पार पराई सिर चरै चलियो चाय बाट अपने पारे ना डरै आगे औकट घाट। कबीर बन की दादी लाकरी ठाडी करै पुकार मत बस परो लोहार के जारै दूजी बार। कबीर एक मरण ते दुए मुए दुए मरण ते चार चार मरणता छह मुए चार पुरख दुए नार। कबीर देख देख जग टूंडिया कऊ न पाया ठौर जिन हर का नाम न चेत्यो कहा पुलाने और।

जेह जेह डाले पग तरो सोई मुरमुर जाए। कबीर अवरा कोई उपदेश ते मुख मैं पर है रीत।

कबीर संगत साधकी दिन दिन दूना हेत साकत कारी कंबरी तोए हुए ना सेत। कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए जो किस की आसो मन किया बूंदा मुंडिया जाए। कबीर राम ना छोड़िए तन तन जाए ता जाओ चरण कमल चित विद्या रामे नाम समाओ। कबीर जो हम जंत बजावते

राखे तलै दुराए प्रगट पे निदान सब जब पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटंब तंदा करता रह गया पाई रया न बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जुगावन जाए सरपन हुए कै अवतरे जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के

कबीर चतुराई अत कनी, हर जप हृदय माहि। सूर्य ऊपर खिलना, गिरह तठाहर नाहि। कबीर सोई मुख तन है, जा मुख कहिए राम। देही किसके बापुरी, पवित्र हुए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली, जा कुल हर को दास। जे कुल दास न उपजै, सो कुल टाक पलास। कबीर है गए बाहन सकन कन, लाख तजा फहराहे। या सुख ते पिखे आपली, जो हर सिमरत दिन जाहे।

बूढ़ा बंस कबीर का पूज पूत कमाल हर का सिमरन चाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु कुमल न जाई है साथ न ले जै कोय पाछ पाव न दीजिए

कहे न को पतियाय। हर जैसा तैसा यूही रहो हर के गुण गाए। कबीर चुगै चितार पी चुगै, चुग चुग चितारे जैसे बचरे कुंज मन माया ममता रे। कबीर अंबर कनहर छाया बरख परे सरताल, चातरक ज्यों तरसत रहै तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जौनस बिछरै आए मिलै पर बात, जो नर बिछरै राम सो ना दिन मिलै ना रात। कबीर रहना इर बिछुरिया रहो रे संक मजूर। देवल देवल ताहड़ी देसै उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जा का बासा गोर में सो क्यों सोवै सुख। कबीर सूता क्या करे उठ के न जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो लांबे गोड़ बसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संग ते बीचरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गैल न छोड़िए मार लागा जाओ, पेखत ही पुनीत हुए भेट तो जपिया नाओ।

लागी मंदर द्वार ते बग्या काढ़िया जाए कबीर कारण सोपेओ जो किनो करतार तिस बिन दूसर को नहीं कै सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब जाय पहुँचै खसम को बीच ना खाही कांब।

कबीर काल करंता अभय कर वकरता सुताल पाछे कछु न होएगा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत एक देखिया जैसी तोई लाख दिसे चंचल अतकना दिसे चंचल बहुगुणा मत ही नाना पाक। कबीर मेरे बुद्ध को जम न करे तस्कार जिन्यो जमुआ सिरजिया सो जपिया परवदगार। कबीर कस्तूरी पिया पवर पय सब दास जो जो भगत कबीर की त्यो त्यो राम निवास। कबीर गै गच्छ परयो कुटुंब।

कबीर बसनो हुआ था क्या पिया माला मिली चार। बाहर कंचन बारहा पीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा हुए रोबाट का तजमन का अभिमान। ऐसा कोई दास हुए ताहे मिला भगवान। कबीर रोड़ा हुआ ता क्या पिया पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास है जो तरनी महके। कबीर खेह हुई तो क्या पिया

हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ऊच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए, ताते पली मधु करी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते युजर पला राम भक्त जे ठाए।

हीरा किसका बापरा पूजन रतन करूड़। कबीरा एक अचंपू देखियो हीरा हाट बिकाय। बणजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जह ज्ञानता धर्म है जहा झूठता पाप। जहा लोभता काल है जहा खिमाता आप। कबीर माया तजीता क्या पिया जो मान तजिया नहीं जाए। मान मुनि मुनि वर्गले मानस बै को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बहया एक। लागत ही पुए मिल गया परया कलेजे छेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक। इंदे एक न लग गई जो बांस बजाया फूक। कबीर है गै पहन सकन कन छत्रपति की नार। तास पटन तर ना पुजै हर जन की पनहार।

कबीर काम परे हर सिमरिया ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो हर गया बहुरै बित। कबीर सेवा को दुए भले एक संत एक राम। कबीर सेवा को दुए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। कबीर जहे मार्ग पंडित गए पाचै परी बहीर एक अवकट काटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका लाज सी जबले तरे मसान।

कबीर दावै ताजन होत है निरदावै रहे निसंक जो जन निरदावै रहे सुगणेन्द्र सुरंक कबीर पाल समूहा सरवर परहा पी न सकै कोई नीर भाग बडे तै पायो तू पर परत पियो कबीर कबीर प्रभाते तारे खिसै त्यो यो खिसै शरीर एद नैना मत छूहो एद अखर ना खिसै सो गै रहियो कबीर

कबीर संत न छाड़े संतई जो कोटक मिले असंत मलया गृप अंगम बेटियो ता शीतलता न तजंत।

कबीर पली पई जो पो परया दिसा गई सब पूल पूरा गर पानी पया जाय मिलियो टलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी दे दिवस चार को पेखना अंत खेह की खेह। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब देह गुरु गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खेह।

गल्पया मारे सतगुर बान। कबीर सतगुर सुर में बाहया बान जो एक, लागत ही पोए गिर प्रया परा करे जे छेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई पूम विकार बिन संगत यो मानई, हुए गई पठछार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी पूम मिलाए यनक सयाने पच गए ना निर्वैरी जाए। कबीर हज काबे हों जाए था, या गै मिलया खुदाए, साईं मुझ स्यों लर प्रया तुझे किन फुरमाई गाए।

न पकर कोय। कबीर तरती अर्याकाश में दुए तू बरी अबद्ध खड़ दर्शन संशय परे।

तेरा तुझ को सौ पते क्या लागे मेरा। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू

कबीर हर का सिमरन जो करै सो सुखिया संसार। इत उत कतै न डोलई जिस राखै सृजन हार। कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छाए, परा पूर्ब ली पावनी प्रगट होई आए। कबीर टालै टोलै दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए। ना हर पजयो ना खत फटियो, काल पहुँचो आए। महला पंजवा। कबीर कुकर पौकना, करंग पिछे उठताए। करमी सतगुर पाया, जिन्हों लिया छाए। महला पंजवा। कबीर तरती सादकी, तस्कर बैसे गाहे। तरती पार न ब्यापई, इनको लाहू लाहे। महला पंजवा। कबीर चावल कारने, तुख को मुहली लाए। संग कुसंग

काहे जी पुछाई ले राम न लाभ चीत। नामा कहत लोचना मुक्ते राम समोल। हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंजवा। कबीरा हमरा को नहीं हम किस हु के नाहे। जिन्यो रचन रचाया तेसी माय समाहे। कबीर की चिड़या टांगिर परया किछु न आयो हाथ। पीसत पीसत चाबिया सोई निभिया साथ।

दीप कुए पर कबीर लागे प्रीत सुजान स्यों बरजा लोगे अजान ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंड

कबीर जो मैं चित वो ना करै क्या मेरे चितवे होए अपना चितवे हर करै जो मेरे चित न होए। महला तीजा चिंता पी आप कराए सी अचिंत पी आपे दे नानक सो सालाहिया जे सबना सार करे। महला पंजवा कबीर राम न चेतियो फिरिया लालच माहे आपाप करन ता मर गया युद्धपुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी केवल काची तहात सबत रखै तरम भज नाए ता बिनती बात। कबीर केसो कुकिया ना सुइया यसार रात दिवस के कुकने कबू के सुने।

कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो कटक कटंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब।

कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत।

तिस बैर सातल जाहे। नीचे लोयन कर रहो ले साजन कटमाहे। सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो। नीचे लोयन क्यों करो सब कट देखो पियो।

जगत का भगतन का गुर नाहे अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो पे दो माहे हर है खांड रित में बिखरी हाथी चुनी न जाए कै कबीर गुर भली बुझाई कीटी हुए कै खाए कबीर जो तोय साध पिरम की शीश काट कर गोए खेलत खेलत हाँ।

देख न सै दया से पंखी सुए बैठ फरीदा को के दया चंगे दया मती दे दया नित जो सैतान मंजाए आ से कित फेरै चित।

जो ऊपर अंगारा फरीदा लोड़े दाख बिजौरिया किकर भी जय जट हंडे उन कतायदा पैदा लोड़े पट फरीदा गलिये चिकड़ दूर कर नाल प्यार ने हो चला ता पिजै कंबली रहा ता टुटे ने हो पिजो सजो कंबली अल्ला वरसों में हो जाय मिला तना सजना टुटो ना ही ने हो।

जाकुआरिता चाहो विवाहिता मामले फरीदा उपछुताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे

अजै न पतीनो हे। फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे लाए, अगै मूल ना आवसी दो जग संधी पाहे। महला पंजवा फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माए, मंदा किसनु आखिया जां तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपिया जे गल कपै चुख, पवन न इति मामले सहा न इति दुख। चबण चुलर तन से सुनियर बह गए, हिड़े मुती ताह से जानी चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हटाए, देही रोग ना लग गई पल्ले सब किछ पाए। फरीदा पंख पराहुणी दुनी सुहावा बाग, नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज।

कंदी वहन ना टाहे तो पीले का देवना जिद्र रब रजाए वहन तदाउ गौ करे फरीदा दुखा सेती देव गया सूला सेती रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपर वात लम्मी लम्मी नदी वह कंदी की रहेत बेड़े नु कपर क्या करे जे पातन रह सुचेत फरीदा गली सो सजन वीह एक टूटें दी नाल हा तुखा जुमा लीह कारण तन्ना मा पिरी

ना करी। सबर अंदर साबरी तन एवै जालेन, होर नजीक खुदाए दै भेत न किसै देन। सबर एहो सुआओ जे तू बंदा दिड़ करे, वद थी वै दरियाओ टोटना थी वै वाहड़ा। फरीदा अंदर वे सिंगा खड़ी, चोपड़ी परीत इक न किन्नै चालिया, दरवे सावी रीत। तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन, पैरी थका सिर जुला जेमू प्री मिलन।

सवैये महले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो। गुण गावत मन होए बेगासा सतगुर पूर जन की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अविनाशी अवगत ते आयो। तिस पेटे दरिद्र न चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सो जन जन की रे अम्य नाम जाको फुरिया। इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरी। काव कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सारिया भर भरे छुट्टत परवाह आम्य अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया। ते पी मैं संत करह मन मजन पुब जिनों सेवा करिया। तिन पौ निवारियन पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे। कब कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सारिया भर भरे। सत गुरमत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया। जाग्या मन कमल सहज प्रकाश आया भै निरंजन करै लहा। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करी। काव कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सरिया भर भरी। अनपौ न मानिया कल विलागी पारस भेटिया सहज करी। सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार भरी। मेटिया जन्मांत मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे। कब कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सारिया भर भरे। अपार भरे पायो अपार हृदंतर धारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो। सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माणै। नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो। गुरु रामदास कल उचरै तैं अटल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बसै अम्य रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुरत दुरंतर नासै। सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सील सनाम फुटै। सतगुर परमान बिदने सिरिओ जग जस्तूर बजायो। गुरु रामदास कल उचरै तैं अपै अमर पद पायो। जग जितो सतगुर परमान मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो। नवनिध नाम निधान रिद्ध सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अविनाशी। आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो। गुर रामदास कल उचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो। प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली न हुटै सतगुर शब्द अथाह अमय धारा रस गुटै। मत माता संतोख पिता सर सहज समायो। आजोनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपरपर मन गुर शब्द वसायो। गुर रामदास कल उचरै तैं जगत उदाहरण पायो। जगत उदाहरण नव निदान भगता पव तरण अमृत बूंद हर नाम बिश की बिखै निवारण। सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत पड़ लागे गुर प्रसाद पाइए धन ते जन बड़ भागे। ते मुक्ते भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो। गुर रामदास कल उचरै
ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਇਓ, ਸੇਜ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸ਼ਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਾਇਚੋ, ਸਦਾ ਸੀਲ ਸਨਾਸੋ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਚਰਿਓ, ਨਾਮ ਟੇਕ ਸੰਗਾਤ ਬੋ ਹੈ, ਆਜੋਨੀਓ ਭਾਲੇ ਅਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੋ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਵਾਸ, ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਮ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਦੁਰਤ ਦੁਰੰਤਰ ਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਨੀ ਅਭਿਮਾਨ ਨਿਵਾਰੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਭਵਜਲ ਤਾਰੈ, ਪਰਚੋ ਪਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪਾਇਓ, ਤਿਨ ਸਕੇ ਅਥੋ ਜਨਮ ਜਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਭਜ ਕਲ ਕਬ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂ ਸਮਾਣੇ, ਅਨਭਉ ਨੀਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਰਸ ਜਾਣੇ, ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਧਰਿਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੀ ਅਪਰਾ ਸਰ ਭਰਿਆ, ਅਕਤ ਕਥਾ ਅਮਰਾ ਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਇਹ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਜ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਿੱਧ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਓ, ਜੀਅਨ ਸਬਨ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ,

तारण को संतत ही सत्संगत संग सुरंगर तेजस गावत है। त्रम पंत तरि उतरणी तर आपर ही लिव तारण तावत है। मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटित दिन आगर। गहर गंभीर अथात बड़ सुभारु सदा सब बिदरत नागर। संत मराल करें कंतु हल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कालयुग दुर्त दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जा को मौन त्यान तर फेरत सगल जुग कबहों को पावै आत्म प्रगाश को। बेद बाणी साहित बिरंच जस गावै जा को शिव मुन गहन तजात कंबिलाश को। जा को जोगी जति सिद्ध साध के अनेक तप जटा जूट भेग किए फिरते उदास को। सो तिन सत गुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निधान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज ते लोग प्रगाशे देखत दर्स पटक प्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासी। सेवक सिख सदा अत लुभित

सिमरंत रिद्ध सिद्ध नमनिद पावै सोई रामदास गुर बल पाण मेर संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरो नरो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास तां ते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरदर अंधार को नाश कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिवें अंगद अंग संग नानक गुर तिम गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निस्बा सुर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मन तुम्बल यागर प्रगट सुबास ध्रू प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लै तुप जो जो प्रगाश जि पिखत अत होए रहस मन सोई संत सार गुरु रामदास

की गुरु रामदास रखो शरणाई। मोह माल विवास कियो काम गह केस पछाड़ियो। क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों झाड़ियो। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सुमन्नै। भाव सागर बंध्यो सिख तारे सुप्रसन्न। सिरिया तपत सचो तखत जोग भोग संजुत बल। गुर रामदास सच सल भण तू।

सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरा तुर आदि जुगाद अनाद कला धारी त्रेलुआ अगम निगम उदरण जरा जमिया अरुआ। गुर अमरदास थिर थप्यो परगामी तारण तरण आगे अंतक बदे न सल कब गुरु रामदास तेरी शरण। सवैये महले पंजवे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरख चालिया बिनाशी जिस सिमरत दुर मत बल नासी सतगुर चरण कमल रिद धारंग गुर अर्जन गुण सहज विचारंग गुर रामदास कर कियो परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार हर जन क्यों पायो शब्द गुरु प्रकाशयो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लागी उत्तम पद पायो गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बड़भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन माणक संतोख्यो गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुरु रामदास अनुभव ठहरायो जनक राज बरताया सत जुग अलीना गुर शब्दे मन मान्या आप तीज पतीना गुर नानक सच नीम साज सतगुर संग लीना गुर अर्जन घर गुर रामदास अपरंपर बीना खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचर्यो बिमल बुद्ध सतगुरु समाणो अजुन संभुयो सुजस कल कवीण बखाण्यो गुर नानक अंगद वर्यो गुर अंगद अमर निदान गुर रामदास अर्जन वर्यो पारस परस परमाण सर जीवन अर्जन अमूल्या जोनी संभव पै भंजन पर दुख नवार पार अनंभव अगहां गहन परम्परांत दहन सीतल सुखदातो असंभव दव्यो पुरख पूर्ण विधातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जस जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपूरा पायो बड़भागी लिबलागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस बकता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारण शब्द सार हर समय उदारिया मेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे सत बंत हर नाम मंत्र नव निदना न खुटे गुर रामदास तन सर्ब मै सहज चंदुआ ताण्यो गुर अर्जन कल उचरै तैं राजोग रस जाण्यो पै निरपो माण्यो लाख मैं लख लखायो अगम अगुचर गत गंभीर सतगुर परचायो गुर परचै परवान राज मैं जोग कमायो धन धन गुर धन अपार सर सुपार परायो
ਗੁਰ ਗੰਪਰ ਮਾਣਿਆ ਜਰ ਜਰਿਓ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਲੁਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ ਆਮਿਉ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ ਅਲਖ ਪਾਰ ਗੁਰਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਨਿਵਾਰਿਉ ਪੰਚਾ ਹਰਨ ਦਲਿਉ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਉ ਹਰ ਨਾਮ ਲਗ ਜਗ ਉਦਰਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਨ ਕਹਾਂ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਪਾਇਓ ਸੋਰ ਉਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਣ ਭਾਰਥੋ ਚਾਲੈ ਨਹੀਂ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਭਵ ਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੰਹੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਜਗਤਿ ਉਧਾਰਣ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੀ ਅਬਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਜੋ

पियो ये पद्धत ते मत चुकें रे मन भेद विभेद न जान पियो पर तश हृदय गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो।

कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नामे उदाहरण, बसें संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जानयो भयो तिहि सम सर सोई। तरन गगन नव खंड मै जोत स्वरूपी रहो पर, भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर। अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै, नित पुराण बाचियां वेद ब्रह्मा मुगावै।

अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो, हर बंस जगत जस संचरियो, सो कवन कह श्री गुरमयो। देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंघासन दियो श्री गुरु तां बैठायो, रहस कियो सुर देव तोहे जस

पै काटे सो पाप तिन नरों के, गौर रामदास जिन पायो, शातर सिंहासन प्रथमी।

एक ओहंकार सत नाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। श्लोक 12 ते वधीक महला पहला। ओ तंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी सस्सड़ सुइया किव करी निवण ना जाए थणी। गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए तौल हरी से पी ढेंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थणी। सुन मंदे हरना किए गूड़ा बैण अपार पहला।

सबनी कटी शह वसै, शह बिन घट न कोई। नानक ते सुहागणी चिन्ना गुरमुख प्रगट होए। जौ तो प्रेम खिलण का चाओ, सिर धर तली

जित डिठ तन पर फुड़ चढ़ चबगण वन राजन कोई जीव्या पहुंच न चलिया कोए ज्ञानी जीवै सदा सदा सुरती ही पत हुए सरफै सरफै सदा सदा इवें गई विहाए नानक किसनों आखिए विण पुछिया ही ले जाए दो

संतन के उपकार कहु नानक ते पज मना पौन दे उतरे पार सुख दुख जे परसे नहीं लोभ मोह अभिमान कहु नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान उस्तत निंदया नाहीं जे कंचन लोह समान कौ नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हर सोग जाके नहीं बैरी मीत समान कौ नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान पै काहू को देत ने पै मान त्यान कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग कौ नानक सुन रे मना ते नर माथे पाग जे माया ममता तजी सब ते पे हो दास कौ नानक सुन रे मना ते काट ब्राह्मण वास जय प्राणी हो मैं तजी

हरन काल में हर को नाम, निस दिन जो नानक भजे सफल होए ते काम। जे बा गुण गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम, कौ नानक सुन रे मना परे न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तज लोभ मोहंकार, कौ नानक आपन तरै

इन में का साचो नहीं, नानक बिन भगवान दिस दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत।

मदमाया कैंडा कहो नानक बिनहार भजन परतताए जम्बंद जो सुख को चाहे सदा।

दरे ओ बेसरे ओ गोबिंद नाम कौ नानक बिन हर भजन जीवन कौन काम प्राणी राम न चेतहि मद माया कै अंध कौ नानक हर भजन बिन परत ताहे जम्बंद सुख में बहु संगी बै दुख में संग न कोय कौ नानक हर भज मना अंत सहाय होय जन्म जन्म पर मत फिरयो मिटियो न जम को त्रास कौ नानक हर भज मना निरपै पावे बास जतन बहुत मैं कर रहो मिटियो न मन को मान

करो आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल, दोहरा बाल छुट क्यों बंधन पर, कछु न होते अपाय, कौ नानक आबे ओट हर, गाज जहो होस आए, बाल होआ बंधन छुटे, सब किस होते अपाय, नानक सब किस तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय, संग सखा सब ताज गए, को निबे हो साथ, कहो नानक बिपत में, एक रघुनाथ, नाम रे हो साधु रहो, रहो गुर गोबिंद, कौ नानक जगत में।

जाके सम नहीं को, जैसे मरत संकट मिट, दर्श तुहारो होए। मुदामणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पई।

रागमाला राग एक संग पंज बरंगण संग लापे अठो नंदन प्रथम राग पैर होवे कर ही पंज रागनी संग उचारही प्रथम भैर भी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुनसले के पे बारी ही है पैरों की पंचो नारी पंज मर्ग दसा सना वह बंगाल मद माध बगा वह ललत बिलावल गा वह अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौस कला पै संग रागनी पंचो था पै गौण करी और देव गंधारी गंधारी स्योहती उचारी तनाश्री है पांचो गाई मारा कौ साक संग लाई मारू मस्तंग में वारा पर बलचन कौसके उबारा खौखड़े हो पौ नद गाये अस्तमाल कौ साक संग लाए उन्नायो हिंडोल पंजनार संग सुत उठे तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सर श्री ल पार जा संग लाई पंचू आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र में मंगल सहाये सरस बानो आए बनोदा गावे सस बसंत कमोदा अशपुत्र में कह सवारी पुनाई दीपक की बारी काशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी गुजरी संग दीपक थाव कलंका कुंतले ओ रामा कमल को चंपके नामा गौराओ कन लक लियान अष्टपुत्र दीपक जाना सामे सिरा वह गावे पांचो संग बरंगण लावे बैरारी करनाटी तरी गबरी गावे आसा वरी ते पासे सिद्धवी अलापी श्री राग सिंह पांचो दापी सालू सारग सागरा और गुण गंभीर अष्टपुत्र श्री राग गुण कुंभ अमीरा खस मेघरा वह गावे पांचो संग बरंगण लावे सोट गुण मलारी तो नहीं पुन गावे आसा गुण गुण नहीं ऊंचा सो सो पुनकिनी मेघराग सिंह पांचो चीनी बैरा दरग दरके दारा जबली तन रो जल तारा पुन गावे संग रो श्यामा मेघराग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाय संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के

Dio, सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे, सुनी सची बाणी

दान केस दान रह दान विवेक दान वसाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशनान चौंकियां झंडे मुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार खालस जी के बोल बाले खालसा जी साहब बोलो जी वाहे गुरु सिखां दा मन नीवा मात उचे मादे राखे आप अकाल पुरख अंतर जामे गुरु गरीब निवास जी पातशाह पांदे सदा सहाय दतार पिता जी आओ श्री ननकाणा साहब होर गुरुद्वारे गुरधाम जिदा तो पंथ नूं विछोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी निमाणिया दे माण नेताणिया दे ताण नेओटिया दी ओट ने आसरिया दे आसरा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आविदा कोटान कोट शुकर है आप दी अपार बख्श रहमत कृपा दा सदका आप दे पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सरी विखे सरबत संगतां वल्लों हफ्तावारी दीवान सजे सजे दीवाना विच आपने कृपा कीती दरों करों वरसाए नगर अखाड़ा दिया समूह संगतां नूं दाता जी आओ आप ही ने आप दे चरण संगतां दे चरण प्रसन्न करदा सुभा समां बख्शिश कीता श्री अखंड पाठ साहिब कीर्तन ते गुरु के लंगरां दी सेवा बख्शिश कीती दरों करों वधाए हो नगर अखाड़ा दिया समूह संगतां वल्लों नगर दी चढ़दी गलारी परिवारां दी सुख शांति वास्ते सरबत दे भले लई पंदी चढ़दी कला अते समूह सगर नगर वासियां दे दाता जी कारोबारां दीआं बरकतां अते धीआं भैणां दे परिवारां दी चढ़दी कला लई अते दाता जी संत महापुरश बादा बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां वालिआं दी सलाना याद नूं मनाउंदिआं हां महापुरशां दी याद विच समूह नगर निवासी परिवारां वल्लों आप दे चरणां विच अरदास बेनती करदिआं होइआं आप दी अलाही बाणी दे श्री अखंड पाठ आरंभ कीता है आप दी अपार बख्श रहमत कृपा होई ऐस संपूर्ण तथा भोग पै ने पाठी सिंघां कोलों पाठ करदे हां नगर निवासी परिवारां वल्लों सेवा करदे हां हुणियां फुल्लां बख्श लैणियां अगे तो मेहर भरिया हथ रखणा पड़ी सुनी बाणी दा भाव समूह नगर निवासी परिवारां दे हिरदियां विच वसाउणा दरों घरों वरसाए नगर दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखणा देश विदेश ते इथों दे सब परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखणा परिवारां विच सुख वरतौणा बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखणा तंदुरुस्तियां चढ़दियां गला गुरसिखी जीवन बख्शणा परिवारां दे बख्शे कारोबारां दी बरकतां बख्शणियां अते महापुरब गुरबचन सिंह पिंडरां वालिआं दी याद समूह परिवारां दे हिरदियां विच वसाउणी उहनां दे पाए बचनां ते चल के मार्ग ते चल के अपने जीवन नूं सफल करन दा बल बख्शिश करना अंग संग सहाई हो के वरतना शुकराने वजों समूह परिवारां वल्लों नगर वल्लों आप जी सुंदर माले बेअंत माया अते आप संगतां दी सेवा कीर्तन अते गुरु लंगर द्वारा कीती जा रही मेहर करनी समूह नगर निवासियां दी कीती हुई सेवा अपने दर ते प्रवान करनी अते आउण वाले समय दाता जी चढ़दी कला सबूती हां पैणा दे परिवारां विच सुख वरतौणा इस अस्थान नूं चढ़दियां कला बख्शिश करनी आ पंथ दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखणा और जो माई भाई गुरमुख प्यारे आप दे चरणां च तिल फुल भेटा देगां वास्ते माया रसदां लै के आदिक हाजिर होए ने सब दी कीती हुई सेवा दर प्रवान करनी परिवारां विच सुख वरतौणा समूह संगतां नूं चढ़दियां कला बख्शिश करनी आ पंथ दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखणा पवित्र हजूरी विच अखाड़ा नगर दीआं संगतां वल्लों कड़ा प्रसाद देग हाजरा दर प्रवान होवै परवान दे संगत वरताउण दी आग्या बख्शिश करो इस वर दाता जी दीवान सज रहे ने मेहर भरिया हथ रखणा अते दाता जी मेहर करनी सुरबत संगतां नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी मेहर करो पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी।

नानक की अरदास। वाहिगुरु साहिब जी गोजरी महला तीजा। राम राम सबको कह, कहें राम ना होए

अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत, हर तिस कदे ना विसरे, हर हर करें सदा मन चीत। रहाउ हृदय जिनके कपट वसें, बारों संत कहाएं।

अनेक तीर्थ जे जतन करे ताय अंतर की हो मैं कदे न जाए, जिस नर की दुबदा ना जाए। धर्म राय तिस दे सजाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरु

जस कुताम ना होई। तू करता करना मैं नहीं जाऊं करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या राव। जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब शिवत सवाले जिनकी